कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब का नाम है लिखिया होया है अपने हिरदे ते। किती वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम, रब दा नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

आमीन। मेरी जात होची है, मेरी पत होची है, पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नू नहीं मिलता। असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने। भाई बड़ा कुछ कमा के, बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नसा फिरदा दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे और ये धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार न तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

संसार विच जाके संसार दे सुख नहीं मंगना चाहुंदा। मेरी तुसां ड्यूटी लाई है कि उस मात लोक दी धरती दे उत्ते जाके वध रहे जुल्मां नूं ठल पाउणा है कि हे मालक, हे अकाल पुरख, मेरे ते कृपा करनी, मेरे विच ए शक्ति पाउणी। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने, हे रब, हे सस। सतगुरु जी उस अकाल पुरख दे नामां नूं अनेकां तरह बयान करदे ने। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਸਦਾ ਜਗਮਾਏ।

कृपा कर श्याम यह वर दीजे। सतगुरु जी मैनू यह वर देना कि मैं शुभ कर्मन ते कभू ना टरो। आख्या सतगुरु जी मेरे विच हे रब उस चंद्रमे दे मुताबक उस सूरज दे मुताबक रब आखदे ने सूरज नू कि सतगुरु जी हे अकाल पुरख उस सूरज दी भांत गर्मी भी होवे जोश भी होवे हे सस उस चंद्रमे दे तरह शीतलता सा सुभाव भी होवे ताके मैं डिग्गिया होया नू चुक के गल नाल ला सकां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख दे पावन पवित्र चरणा विच जोदड़ी करदे होए ए मंग मंगदे ने कि जब आओ कि औत निदान बनाए अत ही रण मैं तब जूझ मरो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दा टीचा ही ए सी कि देह शिवा भरम होए ए है शुभ कर्मन ते कभू ना डरो। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख तो ए वरदान लिते ते इस मात लोक दी धरती दे उत्ते आके जुल्मा नू ठल पाया ते डिग्गिया होया नू चुक के गल नाल लाया गरीब दे रक्षक बने दीन दे रक्षक बने। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दे उचारण किते होए सवैये दे नाल असी खालसे दा जन्म दिहाड़ा मनाउंदे हां।

ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖਣਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਨਾ ਲੋਹੇ ਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਸੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਮੂਲੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਮੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਨੁਸ਼ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁਸ਼ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸੇ ਬਹੁਮੂਲੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਮਕੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ। ਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ। ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਨੇ ਪਲਾ ਬਨਣਾ ਹੈ, ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਪਲਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਲਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਅਛਿਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਬਨਣਾ ਹੈ ਕਹਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਭਲਾ ਬਨੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਤੇ ਨਾ ਰਹੋ।
परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से विछड़े हुए हैं उनको हरि की पंक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाया। मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे? देखना, इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा? जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया? अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे? पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे? वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना, मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा? वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है? क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे? वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं बनता, धर्मी बनने से धर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है।
धर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। धर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की जुगती बताता है। धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं, धर्मी बनने से धर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों का स्वरूप प्रकट करते हैं। कहते देखना एक वृक्ष ऐसे दिखाई देता है जैसे उसका सिर नीचे और उसके पांव ऊपर हैं, और ऐसा वृक्ष आप दुख सहकर भी दूसरों को सुख बरसाता है। देखना दूसरों को फल देने के लिए दूसरों से बट्टे भी खाता है, ईंटों की बरखा होती है, पत्थरों की बरखा होती है, फल लेने वाले उसको पत्थर भी मारते हैं, वो पत्थर खाकर भी उनको फल देता है। फिर कहते हैं देखना उनको कणी छांव भी देता है, छांव देकर उनके अंदर आराम देकर उनके मन को ऊपर जाता है। यह भी देखा है उसको काटने वाले काट देते हैं, लेकिन उसी वृक्ष की लकड़ी का फटा दरिया से उनको पार भी करता है। पर ये बोलते हैं कोई कोई है ऐसा मनुष्य जामे में, कोई कोई ऐसा है जो गुरमुख है, जो अपने आप को दुखों में डालकर दूसरों के दुख अपनी झोली में पाकर दूसरों को सुख बरसाता है। ऐसे लगता है परोपकारी जन जगत में इसलिए आते हैं दूसरों को जो कराहे पे हुए हैं उनको राह पाने के लिए, जो अंधकार में फंसे हुए हैं उनको अंधकार से मुक्त कराने के लिए, दूसरों के दुख अपनी झोली में पाकर दूसरों को सुख बरसाने के लिए। लेकिन भाई गुरदास जी अगली पंक्ति में बोलते हैं गुरमुख सुख फल पाया। गुरमुख का सुख फल क्या है? जिसकी प्राप्ति होती है आप गवाया, अपनी मैं को मारकर अपने आप को गवाते हैं लेकिन गिनाते नहीं। हम तो संसार में आते हैं इतना करते नहीं जितना गिनाते हैं, लेकिन गुरमुख आप गवाए ना आप गणा रहे। तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे थे, एक गुरमुख भाई गागर पानी की भरकर ले आता। गुरु तेग बहादुर साहब जी उस गागर को डोल देते, कितनी गागरें आई बारंबार, लेकिन हर गागर को श्री गुरु तेग बहादुर साहब उस गागर को उसके पानी को डोल देते। देखते रहे गागर भरने वाले के माथे पे क्या प्रभाव है, वो तो नदी से कुएं से पानी लेकर आता है, लेकिन आते ही वो पानी डोल देते हैं। उसके मस्तक के देखते रहे कैसा प्रभाव है, कोई चूड़ी तो नहीं, इस पानी डोलने का कोई प्रभाव तो नहीं, लेकिन जब देखा उसके मस्तक के खेड़े को, निरंतर प्यार को, उसका सिर झुका हुआ, वो ता हुक्म मान रहा है,
صاحب کے حکم میں سیوا کر رہا ہے، اس کا تو مقصد ہے صاحب کی سیوا کرنا، اس کا تو آدرش ہے سیوا میں جوجھنا، کیونکہ سیوک مجبوریوں کے آگے نہیں چکتا، مجبوریوں کے ساتھ جوجھتا ہے۔ سیوک رکاوٹوں کے آگے نہیں جھکتا، اس کے ساتھ جوجھتا ہے۔ سیوک دکھوں کے آگے سمرپن نہیں کرتا، دکھوں سے جوجھتا ہے۔ سیوک نے صاحب کو اپنے آپ کو سمرپن کیا ہوا ہے۔ تن شری گرو تیگ بہادر صاحب اٹھ پڑے، اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔

जीवन का उदाहर बन जाएगी। ये गागर ही परोपकारी स्वरूप बनकर ऐसा स्वरूप बनेगी पाई कन्हैया, जैसे इस गागर में सिमरन की बरखा होगी, उस सिमरन की बरखा से जो इस सेवा के स्वरूप में हिस्सा लेगा, शामिल होगा, उसमें सिदक, उसमें सबर, उसमें साहस, उसमें संतोष का करिश्मा प्रकट हो जाएगा। सेवक देखना तो ये है, भाई कन्हैया ने सेवा की, उस सेवा से सेवा राम ने अपने आप को प्रकट किया। आखो वाहेगुरु। सेवा राम से भाई सहज राम ने अपने आप को प्रकट किया। सिदकी भाई अड्डन शाह प्रकट हुए, भाई अड्डन शाह से भाई धर्मदास, भाई दरबारी दास प्रकट हुए। इनमें देखा गया सिदक को भी देखा गया। भाई सेवाराम एक दिन बैठे थे, कैसे परोपकारी थे, प्रसादा छकने लगे, 36 प्रकार के भोजन आगे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक साग का और प्रसादे का बर्तन ले लिया, छकना शुरू कर दिया। साथ में जिज्ञासु बोला, आपके हृदय में तो परमेश्वर है, आपको ये 36 प्रकार का भोजन छकने का क्या भय है? वो बोले, देखना जब राजे दूसरे के किले को जीतना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर से राशन भेजना बंद कर देते हैं। जो बाहर से राशन भेजना बंद कर देते हैं, क्यों बंद करते हैं, ताकि किले के भीतर में जो है बिना उस राशन से कमजोर पड़ जाए, वो किले को खाली करते हैं। ऐसे हमने भी सोचा, हमारे शरीर रूप किले में जो तरह तरह के लाभ के और लोभ के चस्के, जो पदार्थों के लोग भीतर में हमें प्रभु का सिमरन नहीं करने देते, हमने सोच लिया कि शरीर के भीतर ये जीभ के चस्कों के स्वाद जो हैं, ऐसे रस क्यों भेजे जाएं जिनके भेजने से हमारी लाभ और लोभ बढ़ जाएंगे, प्रभु का सिमरन नहीं कर सकेंगे। इसी में देखा सिदक भी प्रकट हुआ सेवा में। आखो भाई गुरु, सिदकियों ने सिदक प्रकट किया, वो डोले नहीं, भाई अड्डन शाह थे। भाई अड्डन शाह एक फकीर के साथ बैठे थे। उन दिनों में ये बात बोली जाती थी, जो मुरले गुरु का सिख होगा उसका कोई हमें बता दे, उसके एक सिर का इनाम दिया जाएगा। तो उधर से बादशाह गुजर रहा था, उस फकीर ने बोला, राजे के पूछने से ये कौन है? तो फकीर बोला, ये गुरु नानक का सिख है। भाई अड्डन शाह बोले, हम गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं। वो तो राजा चला गया, लेकिन फकीर बोला, मैंने तो इस करके बोला था कि एक सिर की ये इनाम देते हैं एक सिख के सिर का, मैंने तो इस करके बोला था, गुरु नानक ते गुरु गोविंद सिंह में अंतर क्या है? कहते, इसीलिए तो हम बोलते हैं, मैं पैसे क्यों बोलूं कि मैं गुरु गोविंद सिंह का सिख नहीं हूं। जिस गुरु का हमने निरपो नाम जपा, निरपो जप है सगल पौ मिट है, सारे बोल, निरपो जप है सगल पौ मिट है। ऐसा ही सास प्रकट हुआ सेवा में, परोपकारी चनों में। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह गढ़शंकर को जीतने के लिए जा रहा था, रास्ते में

उसने बोला, इस सेवा पंथी स्थान है, अरदास करा लें। अरदास हो गई। महाराजा रणजीत सिंह उस जंग को जीत कर जब वापस आया तो बोलिया, भाई भाई साहब, आपको जागीर लगा दें। आखो भाई, आपने अरदास की, हमने जीत प्राप्त की, आपको जागीर लगा दें। ते भाई दरबारी बोले, भाई दरबारी दास बोले, हे राजा रणजीत सिंह, जब आप यहां आए थे तो एक मंगता बनकर आए थे, अब आप दाता बनकर आ गए। जब आए थे तो एक मंगता बनकर, तब तो एक मंगता बनकर आए थे, इतनी देर में आप दाता बन गए। आप भूल गए जिस दाते के द्वार पर आप मंगता बनकर आए थे, जिसने आपको जीत की तरफ, आपके ऊपर कृपा की, वो दाता वही है जो सबके ऊपर कृपा करता है। क्या आप उस दाते के शरीक बनकर आ गए? सेवा करने वाले परोपकारी जनों में सास है, वो कभी भी पह नहीं खाते कि हम राजे के साथ बात कर रहे हैं या किसके साथ बात कर रहे हैं। परोपकारी जनों ने अपने आप को गवा कर सुख फल पाया है। आखो भाई, ऐसी विचार सामने आती है, गुरमुख होना ही सुख फल है, लेकिन इस सुख फल की प्राप्ति उसी को होती है जैसे पितरबाणी में बोला, आ गवाई है ता शव पाई है। मैं बेनती करता हूं, देखना आप यहां पर बैठे हैं, एक प्रभु का, अमृतवाड़ी का एक बहुत विस्मादी बगीचा है। आंखों भाई करो, ए अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। ये जो सत्संगत में बैठे हैं, ये प्रभु का बहुत सुंदर बगीचा है। इस बगीचे में जो बूटे हैं, सतगुरु माली ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने अपार कृपा कर गुरु माली को यह काम सौंपा है। सत्संगत बगीचे में जो बूटे गुरु माली की नजर में पैदा होते हैं, वो सब गुरुमुख पैदा होते हैं। ऐसे लगता है कि गुरु माली सत्संगत में गुरमुख पैदा करता है। पितरबाणी में बोला, सिंचन हारे एक है माली, माली एक ही है गुरु माली, खबर करत है पात पत डाली। जिस माली को पत्ते पत्ते की डाली डाली की खबर है, आप यहां बैठे हैं पर गुरु माली जानता है काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की फिर पहचानत। माली कैसा है? माली के पितर चरणों में शीश झुकता है, ऐसा भी विचार आता है, वो धरती कैसी होगी जिस धरती के ये बूटे हैं। और कैसा बगीचा है, हर बूटे को फल लगता है। इसमें कोई ऐसा बूटा नहीं जिसको फल ना लगता हो, और सब बूटों को एक जैसा फल लगता है, सब ना फल लागे नाम एको। आखो भाई, सगली फूली निफल ना काई, कोई ऐसा बूटा नहीं जिसको फल नहीं लगता। सारी वनस्पति गुरु के
बगीचे की फलती है फूलती है वो कैसी धरती होगी, कैसा बगीचा है। और गुरु माली एक भरोसे में है, कैसा भरोसा, गुरु माली का ये भरोसा है, जैसा ये बूटा है, जैसा मैंने बीज बोया, जैसी मैंने क्यारी लगाई, उसको फल ऐसा लगे, उस फल में मुड़ के उस फल में मैं देखूं, वैसे ही बीज को जैसे बीज ने यह फल पैदा किया है। सात संगियों में गुरु का भरोसा है, गुरुमुखों में गुरु का भरोसा है कि गुरुमुख को ऐसा फल लगेगा जिस गुरुमंत्र से गुरु शब्द की कमाई से इसको फल लग रहा है, जब फल लगेगा उस फल में गुरुमुख में ही ओ सच गुरुमंत्र पार ब्रह्म का मंत्र गुरु शब्द का सार प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये भी सामने एक बात दिखाई देती है, जो धरती है, धरती में जो बीज बोया गया है, धरती ने कभी झूठ नहीं बोला। आखो वाही करो, धरती झूठ बोलेगी भी नहीं, कभी भी धरती झूठ नहीं बोलती, धरती कभी भी झूठ बोलेगी नहीं। जैसा बीज आपने डाला है, जब ये धरती अपना मुख खोलेगी, बता देगी आपने क्या बीजा है। ये नहीं हो सकता कि आप पिक बीजे, आप बोले मैंने अमृत बीजा है, आप जो मर्जी बोले, जैसा चाहे बोले, लेकिन जब धरती ने मुख खोलना है, प्रकट कर देना है आपने क्या बोया है। धरती ने झूठ कभी नहीं बोला ना बोलना है, जो बोया गया है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही सत्संगत रूपी धरती जहां गुरमुख पैदा होते हैं वो भी झूठ नहीं बोलती। आखो भाई करो, जैसी कोई भावना लेकर सत्संग में आता है वो प्रकट कर देती है। कोई भी भावना लेकर आओगे वो प्रकट कर देगी, आप क्या बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। लेकिन धरती ने तो वो बोल देना है जो आपकी भावनाओं में है। आखो भाई, धरती में कभी डाला हुआ बीज धरती की हिक पर नहीं फूलता जितनी देर तक धरती के सीने में ना चला जाए। आखो भाई, धरती के ऊपर बीज डाल देना ही काफी नहीं, बीज तभी ही फूलेगा पुंगरेगा जब धरती की कुख में चला जाएगा। वैसे नहीं, जे धरती की कुख में बीज जाकर पुंगरता है, ऐसे ही सत्संग में आ जाना, बैठ जाना, उठकर चले जाना ही काफी नहीं, जितनी देर तक आकर बैठने वाले सत्संग रूपी धरती में सत का संग नहीं करते, उतनी देर तक ना फूल सकते हैं ना फल प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बैठना ते उठना ही सत का संग नहीं होता, सत का संग तो वो है आपने यहां पर आकर सत का संग भी करना होगा, अपनी सुरती को ऐसे गुणों में लगाना होगा जो सत्स्वरूप गुण है, जिन गुणों से हमें वो फल प्राप्त होगा जिस फल की बात सतगुरु ने की, वीण गुण कीते भगत ना हुए। आखो वाहेगुरु, पितरवाणी में एक शब्द में ऐसा बोला, कैसा, आप सारे रल कर आओ शब्द गायन करें।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ऐ मनुख तू अमोलक हीरे लालां तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन, जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना ले जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके ले जाए, रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना है, बड़ा बलवान समझना है भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जंजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया, उसे वेले तोड़ लई। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई नाल की जाएगा, हजूर कहंदे नाल इना जेड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल ता एक सुई भी नहीं जानी ते तू इना धन कट्ठा करी फिर दे। कहने लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल ले जावा। हजूर कहन लगे भाई नाल तां ले जा सकना है तू जे साडे आखे लगे, महाराज हुक्म करो। कहन लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़वंदा नूं वंड दे उहदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी। उचारण करो श्री, इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन ओ मित्रा धन तां तू नाम दा कठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनू सोती नहीं है कि इना अमोलक श्वासा नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हें आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचा भी हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी।

संगत नू तरला कर रही है। मैं तारा राणी हां, राजे नू दसन तो बगैर आती है, चोरी आती है। जे उनू पता लग गया ते मैनू बोल कबोल बोलेगा। अज जदों हाथ जोड़ के बेनती की ना संगत नू, सारी संगत दे मन विच रहम आई, सारे प्यार विच भिज के प्रभु दे चरणां विच अरदास करन लगे।

तेरी बाणी विच बड़ियां रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दी उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

कि तुसा परम परम कोशिश करोगे। मैं खामोश खलोता सा गुरुदेव, परमेश्वर ने उस कम का जिक्र कर दिता कि तुसा मातलोक विच जाओगे अते धर्म चलाण का हर मुमकिन यतन करोगे, धर्म विरोधी लोगों नूं उपदेश नाल भी अमली तौर ते भी कलम नाल भी बचना नाल भी कर्मा नाल भी मन बच कर्म नाल उन्हां दी राह दिखा।

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है। ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है। लेकिन साहिब कहंदे ने ए मनुख, ए बंदिया, कदी ये भी आखी कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा, ये तेरा दिता हुआ शरीर है। तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। तो जदों तू चाहे चलते हुए श्वासा संगल पा के रोक सकने, तो फिर साडा ते नाना हो गया सारा कुछ। जियो पिंड सब दिसदा, सब किच है तेरा।

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, 1000 हो गए, 10 हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधदे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता है, कहता वाह, बड़िया बड़िया कीमती चीजा मेरे खुदा तू छुपा के रखी है ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब है। सिफर इतने हो गए हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा है, हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला फड़ी बड़े कीमती पत्थर की मोतियां वाली माला, घुमाउंदा घुमाउंदा इहदे मन में आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दिता है, ए बाकी तो सारा मैं इकट्ठा किया। बोलो सिरे, मैं आ गया, कहल करना, ओही मैं।

काम अग्नि दे पांबड़ तो मन बचाओ ते शीतल सुख दा जानू हो इउं कर बंदगी रोजे रख ता तेरा सिदक पूरा होवेगा निभेगा। रुकन दी सलाम कीता आख्या वाह वाह अज खुदाए

दुनिया दा असर डड है, खुदा किस तरह मिलदा है के सुन के धन गुरु नानक साहब जी दा रंग पलटे है, जिसनू उन्हां ने खुदा कहा सी, गुरु दियां कोमल दिल तरबां दा प्रीतम सी, नैन उच्चे हो गए ते डाढे मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप सरवण कर रहे हो, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश

अल्लाह ए वाहेगुरु, तू वड्डा है, करीम है, दया करने वाला, बेऐब है, तेरे विच कोई ऐब नहीं, तू दुनिया नु पालन वाला है। ए दुनिया मुकामे फानी, ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नानक बगोयो जन तुरा तेरे जाकरा पाखा दुनिया खत्म होने वाली। ओ धर्म राजा तो वाला तो फड़ के ले जाओगे।

मैं डर के काबे दी उस्तत कीती जिस तू ओ मुड़ के फिर अपनी असली जगह ते आ गया। इस गल दी गवाही वास्ते पढ़ो इसरार शरीयत दूजा हिस्सा।

एक ही घटना हो गई है, शायद मेरिया अखां विच खलल आ गया है। आकाशवाणी हुई, तेरी नजर विच फर्क नहीं पिया, कब एक कमजोर तीवी नूं, एक कमजोर औरत नूं दर्शन देन गया है, उदे स्वागत ले गया है, जो इस पास से आ रही है।

वापस आए ता प्यारे गुरु की निशानी कौंस नाल ही ले आए। ए खड़ावा अज तक सत्कार नाल उच शरीफ दे पीर दी तोशे खाने विच मौजूद हैं अते बड़े सत्कार नाल उन्होंने रखिया हैं। कई वेर धनवान सिखा ने बहुत सारी नगदी जमीन आदि दे के नजराना दे के खड़ावा लेनिया चाहिया, पर उत्थों दे पीर साहब जी ने मुकद्दस चीज समझ के नहीं दितिया। हां कदे कदे दर्शन करा देंदे हैं पर खास खास

0: ना ही नदियां विच पानी वगदा सी।
1: खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाईदा ना तद सुरग मछ

ब्रह्मांड पाताल आरंभे गुप्त तो परगटियाएंदा। पहला गुप्त सी परमेश्वर कला, फिर खंड ब्रह्मांड पाताल ए बनाए। गुप्त तो परमेश्वर प्रगट हो।

एक ग्रह लभने ओद होर ग्रह निकल आंदा ओनू लभने ओद होर निकल आंदा पर तन गुरु नानक साहब ने कई सौ साल पहले ही कह दिता पाताल पाताल लख आगासा आकाश एक कोई धरती कोई आकाश नहीं होर भी बहुत कुछ है लखा ही